दुखत हो मरे पुरख जावन पग परे तिहारे तनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्या है ताके काल निकट न है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट रिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहारि हो ताके ताप तनक मह हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह श्व सकै न कोई।

गहे की लाज बिचार। अपना जान मुझा प्रत परिया, चुन चुन सत्र हमारे मरिया, देग तेग जग मैं दो चले, राखे आप मोहे आर नाम दले। तुम मम करहो सदा प्रत पारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा, जान अपना मुझा निवाज, आप करो हमारे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, दास जान कर कृपा करो मुहे, हार परा मैं आन द्वार तुहे। अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा, दास जान दे हाथ उबारो, हमरे सब बैरियन संगारो। प्रथम तरो भगवत को ध्याना, बहरो करो कविता बिजनाना, कर संजथा मात चरित्र उचारो, चूक होए काबो ले हो सुधारो, कबे उबाच दोहरा।

जल ते उबजत रंग ज्यों जल ही बिकै सुमाहे दोहरा। जब आए स प्रभु को भयो जन्म तरहा जग आए। अब मैं कथा संक्षेपते सबहू कह सुनाए कब बाच दोहरा।

भगवंता दोहरा काल पुरुष की देह मो कोट का बिसन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा के ते राव सास करोर जलेश दोहरा राम कथा जुग जुग या टल सब कोई पाखत नेत सुरगबा सरगबुर खरा सगरी पुरी समेत चाओ पाई जो एह कथा सुने अरगावै दुख पाप तेह निकट न आवै बिसन भगत की ए फल होई आद ब्याद शुए सकै न कोई सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा पुहुल परी लाहो लेहो सुधारा दोहरा नेत्र तुंग के चरण तार सद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा पर संग दोहरा।

वस्तु पइयो सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो।

राखियो तारो। तम संसार चन लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसार। सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै तां दीवा तन मन थीवै हरिया। तरस पया मेहरामत होई सत

पतत पावन भक्त वत्सल जुगो जोगे अटल चवर तख्त दे मालक हलत पल दे रखियक राजान राज पानान पान देवान देव मां महान गुरु गरीब नवाज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र गोद अंदर विराजमान अति सन्मान जो गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सारे तंता दे योग हो जो संध्या दे सुंदर दवाना विच धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र गोद अंदर सोदर राय राज साहब जी के पाठ सरवण किए हैं उपरंत गुरु घर के कीर्तने पासों अल्लाह बाणी रब्बी बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करके अपने जीवन दियां घड़ियां नूं सफल बनाया है। सतगुरां ने कृपा की है जो सानूं सतगुरां ने आप दे पावन पवित्र चरणों च बैठ के सतगुरां दा पावन पवित्र उपदेश ग्रहण करन दा सुभाग समां बख्शिया है। सो जितना आप रोजाना दी तरह संध्या दे सुंदर दवाना विच बाणी सरवण करदे हो कीर्तन सरवण करदे हो इस तरह चाली लड़ी वार गुर इतिहास दी कथा आप बड़े प्रेम दे नाल भावना श्रद्धा नाल सरवण करदे हो। आपां कल दे दवान विच सरवण कीता है जो कवि संतोख सिंह जी समूह संगतां स्रोतियां दे मनोरथ नूं जाण के जदों समूह संगतां ने बेनती कीती है जदों धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी दे जो सरोवर दी सेवा बारे कार सेवा बारे दस रहे कि आह गुरसिखां ने श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी दे इस पावन पवित्र अमृत सरोवर की सेवा च बड़ी श्रद्धा भावना दे

ज्ञान तिहान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे।

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलदा, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र

0: अष्टपदी
1: जिसके अंतरराज अभिमान
0: सो नरकपाती होवत स्वान
1: जो जाने मैं जो बनवंत
0: सो होवत पिष्टा का जंत
1: पाप को कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोज परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे
0: नान की है मुक्ति अगै सुख पावे
1: धनवंता हुई कर गर्भावे
0: तरण समान का संग न जावे
1: बहु लश्कर मनुख ऊपर करे आस
0: और भीतरता का हुए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: में हुए जाए पुष्मंत
1: न बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हो तारी
0: शरम पावे सकले बरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आपस को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट न आवे
1: सर्प की रेन जा का मन होए
0: कहो नानक ताके निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: तब इस को सुख नाही कोए
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब रह को बैरी मीत
0: जब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा ते बंधन टूटे
0: गुर प्रसाद नानक हो छुटे
1: सहस कटे लख कोट तावे
0: रतन आवे माया पछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: नैत बतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सुपन मनोरथ फिर थे सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभु सोए
1: जो किस पीनो सो अपना रंग
0: तब ते दूर सब हूँ कै संग
1: दूजे देखे करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न पिनसे आवे न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेशे समझे आप
0: आपे रचिया सबके साथ
1: आप कीनो अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पोस्ते पिन कहो किस होए
0: आंत नंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सच सच सच सब कीना
0: कोट मदय के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कट कट सुनी सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत सरन जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत का दुखन आरजा कटे
0: संत का दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत का दुखन सुख सब जाए
0: संत का दुखन नरक में पाए
1: संत का दुखन मत होए मलीन
0: संत का दुखन शोभा देहीन
1: संत के हथे को रखे ना कोई
0: संत का दुखन थान भ्रष्ट होए
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक भीतरे
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन का दुखन काग ज्यों लवे
1: संतन का दुखन सर्प जोन पाए
0: संत का दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन का दुखन तृष्णा मह जले
0: संत का दुखन सब को छले
1: संत का दुखन तेज सब जाए
0: संत का दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाउ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक कहन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज तेहीन
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख मैं दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा अपवित
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लगे
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊ
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी कित काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उदयान परमाइये
0: संत का दुखी उजड़ पाई है
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस ना ही
0: अपन बीजा पे ही खाए
1: संत के दुखी को अवर न रखन हार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इउ बिललाए
0: जो जल बे हून मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: जो गुआर तेरे खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन दिक्का तो रही पया
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइये
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइये
1: संत के दुखी की पूजे न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न दृष्टे कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिस को नमस्कार
1: रबी उसत करहो दिन रात
0: तिसे त्यागो सास गिरा
1: सब कछ वर्त्य तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वड पागी नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राई।
0: ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪਉ ਜਾਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਨ
0: ਜੀਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ
1: ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਹੇ
0: ਕੌਰ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ
1: ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ
0: ਨਾਨਕ ਕੈ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹਾਥ
1: ਜਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ
1: ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ
0: ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ
0: ਸਦਾ ਸਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ
1: ਨੈਨੋ ਬੇਖਾ ਪੁਰਕਾ ਰੰਗ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰ ਬਿੰਦ
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ
0: ਆਦਰ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ
1: ਵਡ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
0: ਚੇਤਨ ਮੰਤਕ ਨੀ ਸੰਸਾਰ
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ
0: ਤੇ ਤੁਤ ਕੀ ਉਹ ਸੋਝੀ ਜਾਣੈ
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ
0: ਨਾਨਕ ਤਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
0: ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ
1: ਹਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ
0: ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ
1: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਨ ਕੀ ਫਸ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੁੱਖ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਜਿਤੇ ਆਵੈ
0: ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵੈ
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ
1: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ
0: ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ
0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਪੂਜਿਆ
1: ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਸ਼ਮੂਲ
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ
1: ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹਿ ਕਿਸ਼ ਮਰੈ
0: ਆਪਣੇ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ
1: ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ
0: ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾ ਪਿਥਾ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸ਼ ਖੰਡ
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਲਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ
1: ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਪਾਵੰਤ
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਨ ਮੰਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ
1: ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ
0: ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਟ ਭਾਗੈ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰ ਮਾਨ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਸਤਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਗ
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ
0: ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ
1: ਜਪ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤੇ ਸਮਾਹੀ ਸਮਾਏ
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣੇ।

0: पूरे गुर का सुन उपदेश
1: सार ब्रह्म निकट कर पेख
0: सा सा सिमर हो गोबिंद
1: मन अंतर की उतरे चिंद
0: आस अनित त्याग हो तरंग
1: संत जना के तुहर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करो
1: साथ संग अग्न सागर तरह
0: हर धन के भर ले हो भंडार
1: नानक गुरपुरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: साथ संग पर परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
0: चित चित्त हो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का यह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमलीक लाल यह रतन
0: संत कमाप हो उदहार
1: आप त्रै लोक कै निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहत बाजै
1: सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजै
0: रखे गोपाल महांत कै माथे
1: नानक उदरे तिन कै साथे
0: शरण जोग सुन सरनी आए
1: कर कृपा प्रभु आप मलाए
0: मिट गए बैर भय सब रीन
1: अमृत नाम साध संग लैन
0: सो प्रसन्न भय गुरुदेव
1: पूर्ण होई सेवक की सेव
0: आज जंजाल विकार से रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभारी
1: नानक नवही खेप हमारी
0: प्राप्ति उस्त करो संत मीत
1: सावधान एकाग्र चीत
0: सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सोहोत निधान
0: सब इच्छा ताकी पूर्ण होए
1: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब दे ऊत पाए स्थान
1: और न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नव निध
1: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रकाश
1: सबके मत सगल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बेता
1: समदर्शी एक दृष्टेता
0: ए फल तिस जन कै मुख भने
1: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
0: तेहो निधान जपै मन कोए
1: सब जुग मैता की गत होए
0: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
1: समृत शास्त्र वेद बखानी
0: सगल मतांत केवल हर नाम
1: गोबिंद भगत कै मन बसराम
0: कोट अपराध साध संग मिटै
1: संत कृपा ते जमते छुटै
0: जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए
1: साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुने लाए प्रीत
1: जन आवे हर प्रभ चीत
0: जन्म मरणता का दुख निवारै
1: दुर्लभ दे तत्काल उधार
0: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
1: एक नाम मन माहे समानी
0: दुख रोग बिन से भय भरम
1: साध नाम निर्मलता के कर्म
0: सबते ऊचता की शोभा बनी
1: नानक एह गुण नाम।

0: गौरी आपने आप साजो अपन रचो नाम दो पिद्र साजिया कर संडठो चाओ दाता करता आप तू तुसुदेव करे पसाओ तू जणो सब से दिल से जिंद को आओ करया संडठो चाओ करया संडठो चाओ
1: हर प्रेम बाणी मन मारया अनियाले।

सेवकी की संतोख की जिन सचो सत्य आया उन्हें मुझे पैन रखो कर कर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंधना पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगले सीधे वेचण सोया वड़ियाई वड्डा पाया।

जैसे कागरा करत विचारं भगत भगवत लिखिय तह उपरे कर पूजिय नमस्कार नमस्कारं के भी ताड़ी दा दरख्त अपवित्र मनिया जांदा वो दे विच नशीला पदार्थ निकलदा पर जदों उस ताड़ी दरख्त दा कागज बनाया जांदा है कागज दे उपर भगवान दी भगती लिखी जांदी है बाणी सिमरन लिखिया नाम लिखिया जांदा है फिर उहदी पूजा हुंदी है उहनू नमस्कार कीतियां जांदियां ने। तो साध संगत जीओ हुण इहनां ने कल जां परसों एक वीडियो पाई है सिंह सभा गुरद्वारा सरी कनेडा वालियां ने कि जी सानू तो पता नहीं लगा भी उन्होंने कारा आ भेज दित्तियां फिर तुसी प्रबंधक जिम्मेवार कादे होए जे तुहानू इहो नहीं पता भी सरूप ले जाणे ने तीन चार दिन इन्हां जाणा आ कार च ते की प्रबंध आ ना उपर चंदोवा जी कार विच चंदोवा भी कोई नहीं ते दो बंदे मूरलियां सीटां ते बैठे ते उह जोड़े पाए उन्होंने तो दोवां दे सीटां दे विचकार उन्होंने कुरकरे ते होर चीजां दे पैकेट ते कुछ खाण वाली पीण वालियां बोतलां रखियां सन और ठंडे वगैरह दियां ये बेअदबी नहीं हुण कह दिता जी असीं उह टोरंटो वालियां जिन्हां संगतां ने जां गुरद्वारे वाले ने मंगवाया सी उन्होंने हुण पुछांगे तुसीं कारां इस तरह क्यों भेजियां उह तां गलती कर गए ते तुसीं क्यों कर रहे हो तुसीं तां सरूप भेज रहे हो ना जिम्मेवारी कादी होई इन्हां दी। मैं कल भी बेनती की सी भाई गुरदास साहब ने कथन किया जेड़ा इस तरह गुरु तो आकी हो जाता है गौर सिखी गौर सिख होए जेड़े गुरु के सिख हो तो गुर सिखी दे अंदर परपक हुंदे ने पर जेड़े खालसा जी हो इस तरह दे लोग हुंदे ने सिखी तो मुनकन हो जाते ने सिखी तो दूर हो जाते ने फिर उन्हां दा हशर बहुत बुरा हुंदा आ उन्हां नूं कोई मूंह मत्थे नहीं लाउंदा। तो बेनती है कि भी सिंह सवेरे 8 बजे तो लैके रात दे 9 बजे तक गुरद्वारा सिंह सभा सरी कनेडा विखे बाहर वार रोस शांतमई धरना लाउंदे आ गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी करके। साडा सारिआं दा फर्ज बणदा जिन्ना भी समा हो सके उत्थे जरूर आपां पहुंचिआ करिए। तो हुण बहुत ही सत्कारयोग गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीआं दे पवित्र दरबार दे कीर्तनीय सिंघ रागी भाई बलजीत सिंह जी जूके वाले उहनां दे रागी जथे तो अमृत गुरबाणी शब्द कीर्तन सरवण करदे आ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

झूठ सिंघासन ते बैठा है, सच दा रैबर सुकरात उनु जहर दा प्याला दे के तड़पा के मारिया जा रहा है। दिसदा है वक्ती तौर ते झूठ दी जित आउंदी है। बाबर सिंघासन ते बैठा है, गुरु नानक बाबल दी जेल देखना है। जहांगीर सिंघासन ते बैठा है, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी देना है। जहांगीर सिंघासन ते बैठा है, छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ग्वालियर दी जेल विच बंद ने। झूठ ते सिंघासन ते बैठा है झूठा औरंगजेब, सच चांदनी चौंक दे शहीद हो रहे हैं, जलाद गर्दन उड़ा रहे हैं। झूठा सूबा सरहंद होते सिंघासन ते बैठा है, पर धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे मासूम लाडले सच दे मजसमे दीवारां दे चिणे जा रहे। हुण मैं इन्ने ही टूक दोहरा के था कि मैं लड़ी जो छेड़ी हुई सी वो अर्ज करा, वक्ती तौर ते झूठ दी जित आउंदी है, लेकिन कूड़ ने खुटे नानका ओड़क सच रही। बाबर नू ते अज कोई पुछण वाला नहीं, गुरु नानक दी जय जयकार सारी दुनिया च। जहांगीर दी कबर ते अज दीवा जलाण वाला भी कोई नहीं, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी जय जयकार, उन्हां दा संदेश उपदेश घर घर विच पढ़िया जा रहा है, सारी दुनिया च गाया जा रहा है। एक दफा बंबे तो बाई रोड हजूर साहब मैं जा रहा सी, रस्ते च औरंगाबाद आउंदा है, ते औरंगाबाद तो पहले आउंदा है खुलदाबाद। खुलदाबाद विच औरंगजेब दी कबर है, शायद आपने पता होगा। ख्वाजा मयूदीन चिश्ती दा जिहड़ा पोतरा सी उहदी कबर उत्थे है खुलदाबाद विच। औरंगजेब ने वसीयत कीती सी मेरी कबर उहदी कबर दे कोल बनाना, क्योंकि वह फकीर सी, वली अल्लाह सी, गुनाह कमांदे सन, भी चलो एक फकीर दी कबर दे कोल मेरी कबर होवे ते शायद मैं दोजक तो बच जावां। लेकिन उसने इस्लामी शरां दी पाबंदी निभांदे आया हुक्म कीता सी कि टोपियां बना के कुरान शरीफ लिख के वो जो बाजार च बिकिया ने ते ओदे पैसे जो मैं कट्ठे कीते ने मेरी कबर ते ओही खर्च करना, मेरी मैयत ते ओही खर्च करना, बाकी नहीं। शायद आपनो पता होवे खजाने दे पैसे दी रोटी नहीं खांदा सी, अपनी मेहनत दी रोटी खांदा सी। ये इतना वड्डा अपने आपनो परहेजगार साबित करदा सी। लिखत ते मुताबक जो वो पैसे कट्ठे होए वो दो दिनार ते अठ दस दरम करके लिखे होया, ये तीन चार रुपए बनते ने उस हिसाब के न, ज्यादा नहीं बन, क्योंकि इधर अरब देशों जो सिक्का चलता उन्हें रियाल या दिनार कहते हैं, उन्हें रुपए का नाम दिनार रख दिता। हुण इतने पैसों ते कच्ची कबर ही बन सकती सी, पक्की नहीं, तो अज भी उत्थे कच्ची कबर है। उहदे चारों पासे निजाम हैदराबाद ने हुण संगमरमर दी जाली बना दित्ती है, कबर कच्ची है। मैं सारा दृश्य देखिया, क्योंकि ख्वाजा मई दिन चिश्ती दा जिहड़ा पोतरा है उहदी

कर्ता पुरुख निर्भो निर्वैरकाल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंतु नानके राम दामोदर माधवे गुरु रूप सत्संग जी पते प्रवान करने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो दर कहा सो घर कहा जित बह सर्व समाले। ओ दर कैसा है ओ घर कैसा है हे प्रभु जिथे बैठ के तू तमाम ब्रह्मंड दी जीवां दी संभाल करदा। फिर सतगुर रामकली राग विच ऐसा कहंदे ने रामकली मल्ला पहला जित दर वसें कवन दर कहिए दरां भीतर दर कवन लहे जिस दर कारण फिरां उदासी सो दर कोई आए कहे। सारे दरां तो उदास होके निराश होके जिस दर्दी में तलाश कर रहे हैं कोई दसे कोई ते दसे। एक हकीकत है जितने चिर तक संसार दी प्यास बड़ी प्रबल है निरंकार दी प्यास पैदा ही नहीं होती। जितने चिर तक पदार्थां दी भुख बड़ी प्रबल है परमात्मा दी भुख पैदा ही नहीं होती। ऐसा क्यों हो जाता है? दरअसल शरीर दियां जिहड़ियां लोड़ां ने उन्हों मन अपनियां लोड़ां बना लैंदा। कुछ लोड़ां शरीर दियां ने पर उन्हां लोड़ां नाल मन अपने आप नूं जोड़ लैंदा है तो लोड़ां लोभ बन जांदियां।

बचपना है सी नहीं हो गया, जवानी है एक दिन नहीं हो जाती, बुढ़ेपा है एक दिन नहीं हो जाता, ये जीवन है एक दिन नहीं हो जाता। इन्हां अखां नाल जो कुछ भी दिखाई देता है, जो है वो नहीं है देख बदल जाता है, उन्हों मिथ्या कहते, उन्हों झूठ कहते, कूड़ सब संसार। जितने चिर तक उसकी प्रबल भुख है, परमात्मा की भुख पैदा ही नहीं आती। संसार दियां लोड़ां ने और लोड़ां इस तन दियां ने, और उन्हां लोड़ां नाल मन अपने आप नूं जोड़ लैंदा, तो फिर लोड़ां लोभ बन जांदियां ने और मन की यात्रा रुक जांदी है। ऐसा नहीं कि मन टिक जांदा है, मन गर्दिश दिच रहिंदा है, उसे ही गर्दिश दिच, जिन्हों घूमण घेरी कहिंदे ने, जिन्हों चक्कर कहिंदे ने, और मन सीधे रस्ते तो भटक जांदा है। तन पदार्थ है, पदार्थां तो बने है, मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण ये पदार्थां तो नहीं बनेगा, ये सीधा जोत स्वरूप है। खैर हुण मैं मूल गल आप जी दे सामने आरंभ करा। अनंत काल तक जो धुंध सी, ये पूरा खुलासा आप सरवन कर रहे हो, अरवद नरवद धुंधु कारा, धरण न गगना हुकम अपारा, नांद न रैन चंद न सूरज, सुनने सुन समाध लगाएना। ये दास ने काफी खुलासा थोड़े सामने किया, धुंध ही धुंध से। उसे धुंध दे एक धमाका होया, आवाज हुई, एक कवाओ होया, एक बोल होया, कीता पसाओ एको कवाओ। तो वो कवाओ की सी, वो ब्रह्मंड दी पहली आवाज सी, पर वो आवाज की सी, कलगीधर कहिंदे ने ओ अंकार आद कथनी अनाद, अनादि कथनी पहली आवाज की सी ओ अंकार। इनू कबीर भी कहिंदे ने ओ अंकार आद मैं जाना, लिखिया रमेटे ताए नवाना। इनू धन गुरु नानक देव जी महाराज ते बड़ी लंबी चौड़ी बाणी च बयान करदे ने, और उस बाणी दा नाम भी है ओ अंकार। ओ अंकार ब्रह्मा उत्पत, ओ अंकार किया जिन चित, ओ अंकार सैल जुगवै, ओ अंकार वेद निर्मय। हुण इस दे च मैं थोड़ा समा ना लवां, क्योंकि मैं सारा खुलासा कर बैठा। इस धुन तो अरबां खरबां सूरज पैदा है, पहले सूरज नहीं सी, ना दिन रैन चंद ना सूरज, सुनने सुन रहा है ना, दिन सी ना रात सी, ना सूरज सी ना चंद्रमा सी, ना ये जमीन सी ना आसमान सी, ना दिन रैन चंद ना सूरज, सुनने सुन रहा है। अरबद नरबद धुंधु कारा, धरण ना गगना, ये धरती नहीं सी, गगन भी नहीं सी, ये ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे नहीं सी। इस धुंध दे एक कवाओ होया, कवाओ ओवंकार, उस तो अरबां खरबां सूरज बने, एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े, धुंध पानी बन गई, ए धरण ए धरती सूरज दा टुकड़ा। समा पाके जद ठंडी होई तो ए फिर पत्थर दे रूप दे प्रगट होई। संसार दिच आकार पहले पत्थर दा बनया, पत्थर लखां साल दी लंबी यात्रा तो बन मिट्टी बन बनस्पति बनया, बनस्पति लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद पशु पक्षियां दी शक्ल दिच प्रगट होया, और पशु पक्षी लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद जिस रूप दे प्रगट होए उन्हों मानव कहिंदे ने, मनुख कहिंदे। चूंकि मनुख उन्हां सारियां तो लंघ के आया है, तो कुछ ना कुछ संस्कार सारियां दे इहदे विच है गए। पत्थरां तो लंघ के आया है, बनस्पति तो लंघ के आया है।

रहत मेरा सतगुर जोगी। मनुख रोग है और ए रोग दो हिस्सों विच प्रगट होंदा है, तन दे तल ते रोग बन के, मन दे तल ते सोग बन के। तो क्या जीवन भर रोग ते सोग विच जीवना ही मनुख दी प्रालब्ध है, मनुख दा भविष्य यही मनुख है। रोग विच जीवे, सोग विच जीवे, चिंतावां ते इतनी पीड़ा ने, इतना बोझ है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, गिरंत गिर पतित पातालं जलंत दे दी बैसांतरे। कोई मनुख बहुत पहाड़ दी उच्ची चोटी तो गिर रहा है, हजारां फुट दी बुलंदी तो थले गिर रहा है। गिरंत गिर पतित पातालं जलंत दे दीप बैसांतरे। ज्वालामुखी अग विच गिर जाए और कोई जिंदा जल रहा है। बहंत अगा तोयंग तरंगं अथाह सागर दियां लहरां विच गोते खा रहे होवे, डुब रहे होवे। बड़ी बुलंदी तो गिर रहे होवे, ज्वालामुखी अग विच जल रहे होवे, डुब रहे होवे। इस नाल जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, बहंत अगा तोयंग तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जनमंत मरण। घरेलू चिंता, जगत दी चिंता, परिवार दी चिंता, आर्थिक चिंता, ये ऐसी है महाराज कहने जैसे कोई पहाड़ दी बुलंदी तो गिर रहा हो, ज्वालामुखी अग विच जल रहा हो, या फिर अथाह सागर दिया लहरां विच डुब रहा हो। इंज कह रो मनुख दा पतन हर वक्त हो रहा है, हर वक्त गिर रहा है। कहने ने यात्रा ते चढ़ाइयां दे चौंदी है, निवाण विच ते पतन है, गिरावट। पानी निवाण विच जा रहे स्वास्थ्य कहने आ गिर रहा है, गिर रहा है। जिंदगी निवाण दी तरफ जा रही है, यात्रा ते ओ होंदी है जब चढ़ाइयां दी हो। जब कोई चढ़दा है एक औ घट घाटी राम की, ते चढ़ रहे हो कबीर। किसे हद तक मनुख दी जीवन शक्ति निवाण दी तरफ जावे काम बनदी है, जीवन शक्ति ऊंचाइयां दी तरफ जावे राम बनदी है। राम रस ते काम रस इंज कह लो बुलंदी ते निवाण है, निवाण है, निवाण है। इस पतन दी थोड़ी जिया देर लई ते लोड़ है, ताकि ख्याल आ जाए चढ़ाइयां ते चढ़ना। जद शक्ति निवाण दी तरफ जांदी है, जानी चाहिए कुछ देर लई संतान नू जन्म देंदी है। जद यही शक्ति चढ़ाइयां दी तरफ जांदी है तो भगवान नू जन्म देंदी है। मनुख है जो संतान नू भी जन्म देंदा है, भगवान नू भी जन्म दे सकदा है। संतान नू जन्म देण दे ते पशु भी समर्थ होए ने, कीड़े मकोड़े भी समर्थ होए ने। संतान नू जन्म देण दे च करीबन करीबन सारे मनुख भी समर्थ हो जांदे ने। जीवन ते उस दिन सफल होंदा जद कोई भगवान नू जन्म देंदा है। और भगवान नू जन्म देना की होंदा है, वो स्वयं भगवान मई हो जांदा है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोय न सके पछाने। उन इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, अगर जीवन रोग है ते मन सोग है, तन रोग है, तो फिर की करिए। रोग दिच जीवी है, सोग दिच जीवी है, इस तो छुटकारा हो सकता है। बस धार्मिक ज्ञान ते जगत दे ज्ञान दिच यही अंतर है। फ्रायड जैसा दार्शनिक कहिंदा है

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Bad and Sardarni Surinder Kaur Bad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo
2: 604-9090 ',' तक लाल गंडे 25 पौंड दा बैग 1698 दा पीले गंडे 50 पौंड दा बैग 1698 दा अते बीसी रेड ऑरेंज या येलो शिमला मिर्च लवो 88 सेंट्स नु पाउंड
3: फैमिली केयर फार्मेसी
4: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर 1
3: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो
4: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो
3: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो
4: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन
5: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
3: जा कॉल किरण एट 604-581-1900
6: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ
7: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.